तो भजन दौड़न लई पुरुष चाहिदा है। पुरुष का शरीर प्रभु ने ऐसा बनाया है स्त्री नालों ज्यादा सख्त है और ज्यादा भारी भरकम कम कर सकता है। यही कारण है कि पुरुष पहलवान नाल स्त्री पहलवान मुकाबला नहीं कर सकेगी। जिथे उसका मन कोमल है शरीर भी कोमल है और इस कोमलता की लोड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार विच कुछ कोमलता बच जाए। अगर पुरुष कोल भी कुछ कोमलता है तो यह स्त्री का गुण है और स्त्री करके है। थोड़ी बहुत तर्क जे स्त्री दे तल ते भी मिलती है तो पुरुष करके मिलती है, वो थोड़ी बहुत ते चाहिदी है ताकि उसकी कोमलता की रक्षा होवे। कुदरत का एक नियम है कि फुलना की रक्षा कंडे ही करते ने, फुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सोने की रक्षा लोहे नाल आउंदी है, कोमलता की रक्षा सख्ती नाल आउंदी है। इसनू प्राचीन विद्वान ते इंज भी कहिंदे रहे ने, स्त्री नू हर समय पुरुष की सख्ती की लोड़ है रक्षा लई सुरक्षा लई। प्रथम पिता दी, पति दी, फिर पुत्र दी, ताई जो है ये सुरक्षित रह सकती है, अपनी इज्जत आबरू नू बचा के जो है रख सकती है। व्यास जी ते कहा करदे ने उना दे बोल कि स्त्री प्रकृति दी बेटी है, इस ते इंसाफ चाहिदा है और प्यार चाहिदा है, सत्कार चाहिदा है। सिख साधी साहब कहंदे ने जिस घर दे चों स्त्री दे चीखण चिलाण दी आवाज बाहर आउंदी है उस घर दे चों सुख ते संपदा मान लो बाहर जा रही है। वाकई उस घर दियां खुशियां, उस घर दी शांति, उस घर दा सुकून बाहर चला जांदा है जिथे स्त्री दा रुदन घर दी चार दीवारी तो बाहर चला जाए। कवि तुलसी ने स्त्री दे कुछ वक् वक् रूप इस ढंग नाल जो है बयान कीते ने। स्त्री चार रूप अपने जो है रखती है, उन्हों रामायण विच रामचित मानस विच कवि तुलसी इस तरह जो है बयान करते हैं। जग प्रतिवर्ता चार विद अही, वेद पुराण श्रुति अस कही। इस तरह आख है, उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री उसकी दृष्टि देच जगत देच उसके पति तो बिना और कोई भी पुरुष नहीं है, वही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। इसनु अध्यात्मक रंगण गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर दिती है। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जाने, धन सती दरगे परवाने। जिसने परमात्मा दी झलक अपने पति दिच देखी, महाराज कहने धन है वो सतवंती, धन है वो स्त्री। कोशिश ते हो ही सी साडे देश दे कि स्त्री पुरुष नू परमेश्वर आखे, परमेश्वर दी झलक वो पुरुष दे चों देखे और पुरुष स्त्री नू देवी आखे, वो प्रभु दी शक्ति दी झलक स्त्री दे जो है देखे। अगर इक नू देवी दिखाई देवे और इक नू परमात्मा दिखाई देवे तो घर मंदिर बन जांदा है, घर हरि मंदिर बन जांदा है। पर इक नू भूत दिखाई देवे, इक नू डायन दिखाई देवे
घर ही नरक बन जाता है। पता नहीं पृथ्वी ते कितने घर नरक बने हुए ने, क्योंकि घर च कोई डायन रह रही है, कोई भूत रह रहा है। एक नो डायन दिखाई दे रही है और एक नो भूत दिखाई दे रहे। जीवन दा ढंग ना आया, एक दूजे नु समझण दा ढंग ना आया। कवि तुलसी कहंदे ने जिथे चंगे माड़े पुरुषां दे च आउंदे ने, उथे चंगे माड़े इस्त्रियां दे च भी हुंदे ने। जैसे पृथ्वी ते सिर्फ दिन नहीं रात भी है, मनुखी तल ते सिर्फ गुण नहीं औगुण भी ने। ओ औगुण पुरुष दे अंदर भी ने, ओ औगुण स्त्री दे अंदर भी ने। उत्तम स्त्री दी तस्वीर कशी करदे हां, तुलसी कहंदे ने उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। मद्धन पत प्रत पर प्रत देखियत ऐसे, भ्राता पिता पुत्र नित जैसे। जो उस तो थले दी है उते इस तरह समझ दिए पर पुरुष नो ये पिता है, भरा है, पुत्र है। उदी दृष्टि इस तरह दी होंदी है। अगां चल के कवि तुलसम कहंदे ने कि बिन अवसर भय तह रह जोई, अधम सोनार जानो जग सोई। बिना अवसर मिलिया, बिना मौका मिलिया, उसने बस अपनी असमत साम के रखी है, वरना वो लुटान नो तैयार है। ये सब तो नीवी है, ये सब तो निखिद है। अगर ऐसा निखिदपना स्त्री ते लागू होंदा है तो फिर पुरुषां ते भी लागू होंदा है। पर गुणा दे तल ते अगर देखी है तो जिथे पुरुष रब दे गुण प्राप्त कर सकदा है, स्त्री प्राप्त कर सकदी है। घर विच धन संपदा है, वाकई उस दे जे अद्धा अधिकार पुरुष दा है, अद्धा अधिकार स्त्री दा है। अज ते कानून भी ऐसा मनन लग पे है। ये गल वखरी है कि पुरुष दा अहंकार बराबरी देन नू अजे भी तैयार नहीं, लेकिन इस हद तक ते बराबरी मनी जाएगी। शरीर अलग है, मन अलग है, जिम्मेवारियां अलग अलग ने। अगर पुरुष स्त्री दी नकल करे, स्त्री वर्गा बनना चाहे, मुश्किल। और अगर स्त्री पुरुष दी बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे, ये उसकी सब तो वड्डी भूल होवेगी। क्यों कि पुरुष जैसा जब तन नहीं है तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पाके, पुरुष जैसियां जुतियां पाके, पुरुष जैसी चाल चल के, पुरुष जैसे बोल बोल के, और पुरुष दी तरह ही गंदे नशे जो है करके स्त्री पुरुष जैसी ते नहीं हो सकेगी, पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हां इन्हों बारों भी समझिया समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे तो गुलाब ते नहीं हो सकेगी, पर चमेली चमेली भी होने तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरूनी तल ते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनियां ने, तो होया कि घर उजड़ गए। सियाणे ते कह रहे ने पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओ जो वसदा है रसदा है, तो घर वसदा है स्त्री करके। ते जद घरों स्त्री ही निकल जाए पुरुष दी तरह, तो घर घर ना रहा, वो ते सिर्फ मकान रह गए, इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे दा सहारा है, असली दौलत है।
जिस दिन दी स्त्री बाहर निकल गई, संतान भी टूट भज गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी, मां दा प्यार नहीं मिलिया, मां दी गोद नहीं मिली, ममता हिरदे दे च उना दे प्रवेश नहीं की थी, तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए, उथे औलाद भी सखणी होई, धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री ते पुरुष दी मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी, धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने, स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी, औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आन वाला भविष्य ते बच्चियां दे हाथे सी, तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है, बिगड़दा जा रहा है, क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने, प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने, अहंकार घृणा नफरत सारी दुनिया दे इस नवी पनीरी दे अंदर वध रही है, जिसका कारण है स्त्री का पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप दे बराबरी करना, और पुरुष का इस बराबरी नो किसे हद तक कबूल करना और किसे हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री दी अपनी महानता सी, और किधरे ये अपनी महानता नु समझ लवे तो घर मंदिर बन सकता है, घर हरी मंदिर बन सकता है, नहीं ते उजड़िया होया खोला, उजड़िया होया एक खंडर, इस तो बिना होर जो है कुछ भी नहीं होवेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री दा पक्ष पूरदे होया के है, जे कुछ महान मनुखा करके संसार दा इतिहास रौनकीला बनया होया है, वाकई इना कुछ महान हस्तियां नू इतिहास देचों कढ दईए, सारा संसार बेरौनक हो जांदा है, पर इना हस्तियां नू जन्म देने वाली मां ही ना आउंदी, ऐसी धरती ही ना आउंदी, तो ये फुल किथे खिड़ने सन, और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते स्त्री नू बराबरी दिती। दैवी गुणा दे च भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने, ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इस दे मुकाबले थे संतोख पुरुष है। इसी तरीके नाल सूरवीरता ये पुरुष है, लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिणदे जाइए शांति स्त्री है, क्रांति पुरुष जो है मन लीए, पर क्रांति शांति ते आधारित होवे, सूरवीरता सहनशीलता ते आधारित होवे, और संतोख दया दे आसे ते टिके होवे, ताई खूबी है, और मानसिक तल ते आनंद है। जे मानसिक तल ते इस तरह दैवी गुणा दी लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनया रहे, इना दोहां दी लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां दे दरवाजे दोहां लई खोल दिते, सत्संग दा आनंद दोवें माण सकदे ने, अमृत दोवें पान कर सकदे ने, और इस तल ते धार्मिक दोहां दी बराबरी, और पदार्थ दे तल ते दोहां दी बराबरी, किसे भी तल ते इस नू पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखिया गया, और हर तल ते इस दे गुणा नू सलाहा गया, सन्मानिया गया। कहिंदे ने
जब कोई पुरुष बंदगी कर दिया पूर्ण पुरुष बनता है तो उस दे अंदर स्त्री दी दया ते कोमलता प्रगट हो जाती है। उस दे बोलां दे च भी स्त्री भाव आ जाता है। जैसी कबीर ते गुरु नानक दे बड़े बोल स्त्री भाव दे ने, मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ये बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहंदे ने, कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पिर हों हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरबीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां दी मंजिल एक है, दोहां दा मार्ग एक है। इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखण वाले ने। पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए बोल, पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात ए कुदरत नर ते मदीन देच वंडी हुई है। पशुआं नू लईए, पक्षियां नू लईए, बनस्पति तक नर और मदीन देच वंडी पई है। मनुखी दुनिया इतिहास तौर ते सूक्ष्म जगत नू देखिए, अस्तूल जगत नू देखिए, कुछ नर है कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट ते जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी, ऐसा मनदे ने कि पुरुष दी पसली नू तराश के औरत दा जहूर आलम होया, स्त्री दा जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री दे सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष दे सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी गल ते आद रूप दे च कबूल करनी पएगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक दे च ए दो ने और दोहां दे च ए एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नू बहुत सोहणे ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए ब्रह्म ज्ञानियों, एक गल नू समझो, जानो, पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष। दोहां दा वजूद दोहां करके है, इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवें मौजूद ने। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है, इस 60% पुरुष है, 40% इस दे च मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है, इस 60% स्त्री है, पर 40% इस दे च पुरुष है। साढ़े देश ने नारी नू अर्ध अंग आख्या है। ये गल वखरी है कि कहण दा लब्बो लै जा अर्थ समय दे नाल बदले, नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इस दे अंदर अधूरा है।
अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इसते अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना रहन देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूरन, कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश दे चै और पूर्ण होना चाहता है, जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित नहीं। उसका मूल कारण पुरुष अपने तलते पूरा पुरुष है, उस दे अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तलते पूर्ण नारी है पर पुरुष दे तलते अधूरी है। मां बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नो संपूर्ण करने का जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया उसका नाम आनंद कारज विवाह निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज का जन्म होया, निकाह का जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया, पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच पंडे पैने। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नु पुरुष आख्या है, भक्ति नु नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरआणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष दे अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री दे अंदर। मन दा टिकाओ भाव नाल होंदा है, मन नो सूझ बूझ ज्ञान नाल मिलती है, तर्क नाल मिलती है। तर्क स्त्री दे अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष दे अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी, स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उथे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तलते बहबलों दी है।
इकली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार का चलना ही संसार का चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देंगे, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग देते जिड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उन्हां नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूह दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकदा है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकदा। सारे ही त्याग कर देने स्त्री दा और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो। जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्त ही खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नु चलाए मान रखना चाहती है। ये ताई चल सकेगा परिवार चलन, परिवार चल रहे है तो संसार चलेगा, और परिवार चल रहा है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सहुरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सहुरे, तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलदा है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है। और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होंदी है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होंदी है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होंदा है। इंज कह लो, पुरुष दा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचण दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री दी भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी, क्यों? ज्ञान हीणी है, तर्क हीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत देच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत देच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री को भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है कि एक कस्बे नू पिंड नू अग लगी, सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चो निकल गए, लेकिन आमने सामने दो रहण वाले ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चो निकलण दे च असमर्थ रह गए। अंधा टंटोल टटोल के बुए तक पहुंचे है, और यही हाल पिंगले दा सी, बुए ते बैठे। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेखे है अंधे नो, और आवाज मार के आख्या, मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना, तू मेरी अखां दी वरतों कर ले, आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है, अंधे दी पिट ते ये पिंगला बैठ गया है, रस्ता दस्ता गया और रस्ते ते अंधा चलदा गया। इस तरह दोवें अग दे चों निकलण दे सफल होए। हकीकत है संसार दी अगन दुखां दे चों निकलण दे च स्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे,
تے لنگڑے دا میل ہے اور دوویں نکل سکتے ہیں. اندھے نو پیر مل جان گے اور لنگڑے نو پیر مل جان گے, اندھے نو اکھاں مل جان گیاں. حقیقت ہے, یہ سچائی ہے. پیروں دی ساری گتی کسے حد تک دوہاں دے سمیل تو ہوے گی اور سارا دیکھنا دوہاں دے سمیل تو ہوے گا. رک جائے گا پروار تا سنسار رک جائے گا. یہ دوویں رک گئے تو جگت رک جائے گا. دھارمک دنیا رک جائے گی اگر بھاونا نہ رہی, گیان نہ رہا. پروار ٹوٹ جائے گا اگر استری نہ رہی, پرش نہ رہا. جتھے سواوک ایک گن ہے استری دے اندر, بھاونا پردھان ہے, شردھا پردھان ہے. بھاونا من نو ٹکان دے بڑی سمرتھ ہے, پربل ہے. یہی کارن ہے کہ گھر دی چار دیواری دے ساری زندگی استری بڑی خوشی نال کٹ لیندی ہے, کیونکہ ٹکاؤ ہے. بھاونا من نو ٹکا کے رکھ دیے, شردھا من نو ٹکا کے رکھ دیے. اور ایک پرش ایک دن بھی پورا گھر دچ نہیں بیٹھ سکے گا. ترک اُدے پیراں نو گتی دیندا ہے, بھٹکاندا ہے. چل, اس واسطے کہندے نے اگر ترک نہ ہوئے تو باہر دی دنیا ختم ہوئے گی, اگر بھاو نہ ہوئے تو گھر دی دنیا ختم ہوئے گی. اس واسطے استری دے اندر پریپورن پرماتما نے بھاونا پردھان رکھیے, شردھا پروان پردھان رکھیے. یہ اپنے کول بڑا بھاوک ہردہ رکھ دیے, پر پرش اپنے کول بڑی ترکشیل بدھ رکھ دے. پربل بھاونا کر کے گھر وسیا رہندا ہے, اور پربل ترک کر کے باہر دی دنیا پھیل دی جاندی ہے, ود دی جاندی ہے. لیکن کچھ سواوک اوگن بھی ہے استری دے اندر, پرش دے اندر. استری دے اندر سواوک جو اوگن ہے بڑی پربل ایرشا ہے. استری دی استری نال بہت پربل ایرشا ہے, اور اس ایرشا کر کے, ایرخا کر کے, جیلسی کر کے کئی دفعہ گھر نرک بندا ہے. دیکھن دیا ہے بہتے گھر مردہ کر کے نہیں ٹوٹ دے, استری دی ایرشا کر کے جو ہے ٹوٹ جاندے نے. استری دا استری نو برداشت کرنا بڑا کٹھن ہو جاندہ ہے, بہت کٹھن ہو جاندہ ہے. سس تے نو دیرانی تے جٹھانی, پرجائی تے نناہن, مشکل ہے ایک دوسرے نو سہن کرن, برداشت کرن. یورپ دی دنیا تے سارے پروار ٹوٹ گئے نے, اور ایشیا دے بہتے پروار کل کلیش دے دل دل دے پھسے ہوئے نے استری دی ایرشا کر کے. پر پرش دا ترک پھیلاؤ اس دے اندر بڑے پربل ہنکار نو جنم دیندا ہے. تو پرش دا جو بنیادی اوگن ہے اہنکاری ہے, بہت اہنکاری ہے. پربل اہنکار کر کے اس دا بھی گھر دے کلیش مچانا سبھاوک ہو جاندا ہے. ہنکار تے جیلسی اس دا ٹکراؤ کسے وقت استری تے پرش دا ٹکراؤ ہو جاندا ہے, اور دوریاں نو جو ہے جنم دیندا ہے. لیکن پھر بھی اگر دوویں ستسنگی ہون, ست پرشاں تو پریرنا لین والے ہون, تو پھر دوہیں اپنے گناں دی صحیح ورتو کر کے پروار نو سورگ بنا سکدے نے, سنسار نو سورگ بنا سکدے نے. پراچین زمانے تو لے کے ہن تک دھارمک جگت دے شاید کچھ انہی کمزوریاں کر کے استری
निंदनीय।

गवार शूदर पशुनारी ये पांचों ताड़न हितकारी। जैसे शूदर नो पशु नो ताड़दे रहिए तां ठीक रहिंदे ने, इस तरह शूदर नो ते पशु नो जिवें ताड़दे आ उस तरह स्त्री नो ताड़दे रहिए तां ओह ठीक रहिंदी है। पशुआं दी दुनिया विच खड़ा कीता इस महान चिंतक ने, इस महान कवि ने, साडे देश दे प्राचीन ऋषियां ने, मुनियां ने, ये घोर नरक दी दुआरी है। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास फरमान करदे ने, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी, इते मोक्ष द्वारी है, इस तो बिना मुक्ति किते। हैरानगी, मोक्ष द्वारी किथे नरक द्वारी, किधरे मोक्ष द्वारी। जिन्हां ने नरक द्वारी आख्या उन्हां कोल सब तो वड्डा तर्क ए सी कि स्त्री नूं असी किधरे भी अवतारी दुनिया विच नहीं देखते। अज तक जितने अवतार आए करीबन करीबन वो पुरुष तन धारण करके आए। जे अपने देश दे प्राचीन सिरमोहर अवतारी पुरुषां नूं देखिए, विष्णु ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, बड़े बड़े भक्त ने, ऋषि ने, मुनि ने, पुरुष रूप दे चने। स्त्रियां दे कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार भी देखण नूं नहीं मिली। साहित्य तरह तरह की कला दे जन्मदाते भी पुरुष, संगतराश, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, चोटी दे साइंटिस्ट, चोटी दे राजनेता, हर दुनिया दे हर पासे असी पुरुष नूं अग्रसर देखदे हां, अग्गे देखदे हां। तो पुराने लोगां कोल ए तर्क सी कहण वास्ते कि पशु दा मतलब है पछड़िया होया, तो चूंकि स्त्री भी पछड़ी हुई है, पशु दा मतलब है पछड़िया होया, पुरुष तो पछड़ी हुई है, पुरुष दे पिछे है। इस वास्ते आदि काल तो ऐसा भी रहा कि स्त्री पुरुष दे पिछे ही चले, क्योंकि ये पछड़ी हुई है, हर तल ते पछड़ी हुई है, हर पक्ष से पछड़ी हुई है, पीछे जो है चले। ऐसा भी जमाना लंगे है, दौर लंगे है, जिथे स्त्री केवल धन सी, घरेलू साजो समान दी तरह, वस्तुआ दी तरह स्त्री भी एक वस्तु सी, जैसे कोई धनवान गिणिया जांदा सी, इस दे कोल हाथी ज्यादा ने, घोड़े ज्यादा ने, मकान ज्यादा ने, जमीन ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, तो धनवाना दी गिनती दे च ओ भी आउंदा सी, इस दे कुल इस्त्रियां ज्यादा ने, इहदे कुल 400 इस्त्रियां ने, इहदे कुल 600 इस्त्रियां ने, दूर सतयुग त्रेते दी ते गल की करने। इस दौर दे च भी ऐसे नवाब महाराजे होए ने, 400-400 राणियां और 600-600 बेगमा रखण वाले मौजूद, और इन्हां दी आम जो है चर्चा एक धन सी। किसे हद तक ऐसा दौर भी लंघे है चीन देच, स्त्री नूं पुरुष ने मार दिता है तो ये जुर्म भी नहीं समझिया जांदा सी। जैसे कोई अपने सोने नूं चिकड़ दे सुट देवे, जैसे कोई अपने घर नूं आप ही अग लावे, कोई अपनी धन संपदा नूं साड़ देवे, तो अपना धन सी आप फूके है, कोई जुर्म नहीं। स्त्री एक धन सी खत्म कर देता है, कोई जुर्म नहीं। ऐसा दौर भी लंघे है, और ऐसी भी धारणावां रही ने कि स्त्री दे अंदर आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। गर्स के आदि काल तो स्त्री नूं पशु कहण दा, पछड़े होया कहण दा तर्कशील लोगां कोल जिहड़ा तर्क सी ओए है कि एक कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार नहीं बन सके, अवतारी दुनिया विच नहीं दिखाई देंदी, और ना ही कोई चोटी दी विज्ञान कवित्री है।

सब लो परम ते फिर ते बहुत आयो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कब हू मित है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपे हो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जपे हो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख दे मालिक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभायमान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनो आप जी अज हफ्तावारी जो विशेष दीवान सजदे ने उस दीवान दी हाजरी पर रहे हो अमृत गुरबाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जी ने सरवण कीतिया ने आओ अज आपां धन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह जी उन्हां दा पावन पवित्र शहादत वाला दिहाड़ा मना रहे हां भावे हर साल इस दिहाड़े नूं सिख जगत भावना श्रद्धा दे नाल मनांदा है पर सतगुरु नित नवा है गुरु की साखी सिख दी जिंदगी नूं नित नवी सेध दिंदी है आओ जितनी कुसूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करनगे शब्द दी गुरमत दी रोशनी विच हजूर दे अमृत बचन और उन्हां दे पवित्र जीवन दी सांझ आप जी नाल पा सकां करो कृपा साध संगत अपने ख्यालां नूं संकोच के साहिब धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे चरणां विच बेनती करिए कि आप बख्शिश कृपालता करके विच वरतो साडे अंदर नूं टिका बख्श के अपने अमृत बचन पवित्र इतिहास दी विचार आप ही करा लवो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सतगुरु गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां नूं वख वख नामां नाल भी विद्वानां ने संबोधन कीता धन गुरु अर्जुन देव कृपालू जी उन्हां दी आमद धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे घर अंदर जिन्हां नूं असीं प्यार नाल शब्द वरतने आ बीबी भानी जी माता भानी जी दी कुख तों साहिब धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दी आमद हुई है ते पता नहीं जो गुरु अर्जुन देव जी दी सिफत विच सवैये उचारण कीते ने

अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी कल युग पीढ़ी सोडिया अब चल नीव उसार खलारी कल युग पीढ़ी सोडिया अब चल नीव उसार खलारी जोग जोग सतगुर

साध का संग नाम का रंग निचा अपहंग दूजा घोड़ा ज्योतिषी बन के लियाया ते जदो लै के पहुंचया तुरन लगिया चाबियां अपने कोल सन ते दरोगे नू किले दे उस मालिक नू एक गल कह के आया सी मैं गुरु हरगोबिंद साहब दा सिख हां सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब दा पहला घोड़ा काही बन के लगिया दूसरा घोड़ा ज्योतिषी बन के लगिया अज मैं दरिया विच छाल मार के एक घोड़ा दूजा लैके चला जे तुहाडे कोल दम है मालवे दी धरती ते आयो मेरा गुरु हरगोबिंद तुहाडी इंतजार करदा होवेगा। देखो कैसी निडरता है साहब कोल जदों घोड़ा लैके गया ते सतगुरु अगो लैण आए कह लगे बिधी चंद कुछ मंग। इथे बिधी चंद ने कहा सी दातिया किसे चीज की कमी नहीं पर साहब ने कहा अगे चार बचन तू मंगे सन सतगुरु का अंग साध का संग नाम का रंग नीचा अपहंग कह लगे आ भाई बिधी चंदा अज तो बाद बिधी चंद छीना गुरु का सीना प्रेम भगत पीना ते नाल तीजा बचन क्या कित कदे कमी ना है ते बिधी चंद ने हाथ जोड़ के क्या एक कृपा और कर दे अज तो बाद मंगण वाली बिरती खत्म हो जाए। साहब ने निवाजिया इथे तीजी जंग हुई मेरे गुरदेव इस जंग दे विच भी जिते ने सतगुरु ने इस जंग दे अंदर भी फतेह पाई। साहब जी करतारपुर आए ने मेरे गुरु ने वसना दसिया उजड़ना नहीं आप नगर वसाए ने सिखा नू वसन दी गल कही सतगुरु ने करतारपुर गोइंदवाल अमृतसर उस तो इलावा श्री हरगोबिंदपुरा कीरतपुर साहब सतगुरु करतारपुर दी धरती आए जिथे चौथी जंग हुई है। एक मैं अर्ज करा पहली जंग जिहड़ी अमृतसर दी होई है मैं सिर्फ पंछी झात निकलना पिया वा इस इतिहास विचों कई गल्लां इहदियां मैं छड़ना पिया वा। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ने पहली जंग जिहड़ी लड़ी इहदे विच इक पठान सी पैंदे खां तुसीं सब उहदे नां तों जाणू करतारपुर दे नेड़े रहण वाला यतीम सी ते मेरे गुरु हरगोबिंद साहब दे चरणां विच आया ते साहब ने अपने पुत्रां दी तरह पालिया। जे अपने पुत्रां दी पोशाक बनानी एक पैंदे खां लई जे कीमती की भोजन तैयार करना पैंदे खां लई अपने कोलो दुध घिओ दी इहनू कमी ना रहण दित्ती ते सिख विद्वान कहिंदे ने इह इन्ना तकड़ा सी पैंदे खां पक्की जमीन ते तुरदा सी ते जमीन ते टोए पै जांदे सन। आ सिक्का आपां वेहने आ ना हथ दी तली ते सिक्का रखना ते अंगूठे नाल मसलना ते सिक्के दे उपर दे जिहड़े निशान ने उहनां नूं मिटा दिंदा सी ते असवार भज्जी जाणा घोड़ा पूरी रफ्तार ते जाना इन्हें इको दम सिर थले डा के घोड़े नूं हथां ते चुक के इंज सटना जिवें कोई पंड तोड़ के जमीन ते सड़दा होवे ते जदों किते दो छाण भिड़दे होणे बड़ा बहादुर सी दो छाण भिड़दे होणे ते इन्हें भिड़दे छाणां नूं सज्जे खब्बे हथ नाल सिंगां तों पकड़ के भवां के परां सड़ दिंदा हुंदा सी। पर जदों कुश्ती लड़नी एक भाई बिधी चंद ते दूसरा गुरु हरगोबिंद साहब इन्हू ढांदा सी नहीं ते छेती किते किसी बंदे तो ढसदा नहीं हुंदा इहदी पिट नहीं सी लगदी इन्हें पिट लानी। पर गुरु हरगोबिंद साहब मैं जिस तरीके नाल पढ़िया हो सकदा तुहानूं जानकारी वध होवे दावा नहीं गुरु हरगोबिंद साहब ने इन्हू अक्सर अखाड़े विच ढाणा ते जां भाई साहब भाई बिधी चंद पैंदे दी पिट लांदे सन। साहब ने यतीम जान के पालिया हुण देखो मेरे गुरु दे अंदर दी विशालता इत्थे कोई अल्लाह कह लै कोई राम कह लै कोई रहीम कह लै इत्थे शब्दां दी पाबंदी पिछे ईरखा नहीं पैंदे खां ने अमृतसर दी जंग विच रज के कमशान युद्ध विच अपने आप नूं तैयार करके साहब दे मोढे नाल मोढा जोड़ के फतेह लई परत के एक बंदे विच बड़ी वड्डी कमजोरी है जिद्दन दाते दी कृपा नाल कुछ लै लैंदा है ना ते चंद्रा हंकार दा सप पहले ही खलोता हुंदा है आ सजना इहो जिहा डंग मारांगा जे ते बच गया ते समझ ली सिरे चढ़ गए हों ही तां मारनी है ना। एक दिन मैं शायद अर्ज कीती सी बुल्ला अनायत शाह कोल गया सी इक खिन विचों निकलन लगा ते बुल्ले ने जाके कहा सी महाराज मैनू अल्लाह ताला दे घर दी कोई बात सुनाओ ते अनायत शाह ने कहा खजूर ते चढ़ जा। वह समझ ही पै गया भी अल्लाह ताला दी गल ते खजूर इहदा की संबंध। फिर उहने गल कही भी सजना पुराने सज्जन कहिंदे सन मुरशद दी गल मन्नण विच ही लाभ है ਉਹ ਕਦੀ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਜਦਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਗੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਜੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਡਿੱਗਾ ਉਹ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਮੂਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ।

पुर्जा पुर्जा कट मर कबहू ना छाड़े खेत, मरता मरता जग मुआ कबीर, मरता मरता जग मुआ मर ही ना जानिया कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। बेशुमार

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता की आग्ञा नूं सत करके अपने सिर

खामर उड़ते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे कम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले

पानी निर्मल है, उस निर्मल पानी के जाला खलोता है, उस निर्मल पानी के कमल का फुल खलोता है, उस निर्मल पानी के कमल दिया फुल दिया जड़ा डड्डू बैठा है, उस कमल फुल शिखर से चूसन वास्ते घबरा आ रहा। गुरु तो निर्मल सरोवर है, खिमा करो कई सज्जन इतो कमल वर्गे खेड़े लैके जाएंगे, कई मेरे वर्गे केवल जाला बन के बैठी रहे। ऐसे होंगे जेड़े भवरे बन के आउंगे, शब्द का रस चूस के चले जाएंगे, तो कितनी बदकिस्मती होगी, कई एरिया जड़ा बैठे हो केवल चिकड़ खाई जाएंगे। बिमल मझार बस से निर्मल जल पदमल जावल रे, कह लगे पदमल जावल जर संगत संग दोख नहीं रे। कमल का फुल पानी विच रहिंदा है, जाले विच रहिंदा है, चिकड़ विच रहिंदा है, पर किसे भी परवाह नहीं करता। चिकड़ विच रहने के बावजूद भी सिरा उच्चा करके ले जांदा है, कहिंदा छड्डो परां मैं चिकड़ वल ध्यान नहीं देना, मेरा संबंध सूरज नाल है, इस चिकड़ विच ते कदी खेड़ा नहीं आना, सूरज दीआं किरणां पैण दी देर मैं करोड़ा को दूर उहदी खिच नाल खेड़ जाना। प्यारियो इक कमल का फुल पानी तो चिकड़ तो जाले तो नरमेल, ते जे गुरु कोल आके भी मेरिया मना तेरे कई साल भटक के भी तेरे अंदर का जाला नहीं लथा, केड़ी थां ते जाके अंदर दी मैल धोवेगा। बाबा जी ने दूसरा प्रमाण दिता, कहन लगे धान जा मझ है उन्हों असी चोने पिंडा थावां ते जेड़े जिमीदारा करते हैं सज्जन उन्हां नूं पता है। तुसीं कदी देखो गां दा मझ दा दुध जो है, गुरु ग्रंथ साहिब ने दुध नूं अमृत कहा है, पशु मिले चमियाईयां खड़ खावे अमृत दे। हुण ओह दुध दा भरिया होया पशु उस गां दा दुध चोया, ते अमृत वर्गा दुध लोकां ने पीता, किन्नी बदकिस्मती और चिचड़ दी होवेगी जिहड़ा सारा दिन उस थण दे नाल लगा रहा पर दुध पीण दी थां ते केवल खून पीता रहा। हुण इक बछड़ा है, ओह सवेरे शाम गां कोल आउंदा है, ओह अमृत वर्गा दुध चुंघ के चला गया, ते चिचड़ सारी जिंदगी उसके कोल रहा, पर दुखे चीज का चिचड़ नूं पता ही ना लगा कि जिथे मैं खून पीना पिया इथे अमृत भी है। गुरमुखो खिमा करो जेड़े असी चिचड़ की तरह चोखे नेड़े ढुक ढुक बहने हैं ना, मैं बड़ा वड्डा तरजी हाँ, चेते रखो प्यारो नेड़े रह रहे ते औगणा का खून पीने पया। कोई रसिया आंदा सवेरे शामी नेत्र बंद करके, कोई आसा की वार सुनता, कोई कथा सुनता, कीर्तन सुनता है, ओ अमृत वर्गा दुध पी के जांदा है, पर किन्ना खेद बाबा जी कहन लगे चिचड़ बन के खून ना पी जा, चिचड़ रहिंदा नेड़े है। दूसरी बेनती, कमल की जड़ विच डड्डू है, पर डड्डू किन्ना बदकिस्मत, ओनू समझ नहीं जिन्हां जड़ां विच मैं बैठा, एरे कोल भवरा हुंदा है, ते भवरा दिन विच कदी कदाई आउंदा है, कदी एक दिन आया उन्हें रस लिया चला गया, हमेशा कोल रहण वाला डड्डू चिकड़ खाई गया, सवरा आके सुगंधी लै गया, बाबे नानक दे सिखा तू डड्डू दी बिरती तो उपर उठ, रब तेनू समत बख्शे, तू भवरा बन के नाम दा रस चख ले। मैं तेरी बेनती कर लगा, सारिया विचों दी जोत है, एक संत क्यों दूजा चोर क्यों, एक साकत क्यों दूसरा साध क्यों। भाई गुरदास ने बहुत सोहनी एक उदाहरण दिती, जदों मीह पैंदा है ते नक्षत्रां विचों शांति बूंद दिखदी, ते इस गल आपां चेते रखिए हर बूंद शांति बूंद नहीं हुंदी, शांति बूंद दिखण दा कोई वक्त मुकर्र है, हर बूंद शांति बूंद नहीं, पर देखो ओही बूंद धरती ते डिगी, पानी ते डिगी, ते समुंदर दे पानी विच डिगदिआं सार ओह पानी दा रूप हो गई, है एक बूंद ही। जदों अरशां तों डिगी पानी विच डिगदिआं सार पानी दा रूप हो गई, ते जदों ओही पानी दी बूंद सिप्पी दा मुंह खुल्ला सी, सिप्पी विच डिगी ते कुछ दिनां तों बाद मोती बन गई, ओही बूंद केले दे विच डिगी ते मुशक खपूर बन गई, ओही बूंद वाही होए जमीन ते डिगी ते जिस खेत विच नक्षत्र स्वांति बूंदा डिग पैण उस खेत की फसल बड़ी चंगी निकलदी है। जिस फल वाले रुख उत्ते ओह बूंद डिग पै, चेते रखियो उस फल का रस दूजे फलां नालों वखरा होवेगा। एक बूंद है, ओही बूंद पानी विच डिगी पानी बन गई, ओह बूंद सिप्पी विच डिगी कीमती मोती बन गई, ओह बूंद केले विच डिगी ते कपूर बन गई, ओह बूंद जमीन ते डिगी ते फलां वाले रुख पैदा हो गए। किन्नी बदकिस्मती, ओह बूंद सप्प दा मुंह खुला सी, ओहदे विच डिगी डिगदियां सार जहर बन गई, है बूंद एही।
तब मैं जोत जोत है सोए, चोर क्यों में साध क्यों में डाकू क्यों में ते संत क्यों में, प्यारे जिदन आए सा निर्मल बूंद सी, ओ दिन कोई वैर नहीं सी, ओ दिन कोई दवैश नहीं सी। मैं कई बार बेनती करना हूं, जो इंसान का बच्चा जन्म लेंदा है ना, साडे लोग देखो ओदे कन्ना विच पहली आवाज मैं भी पैंदी है, ओ रोंदा है। ते मैं पिछले दिन भी अर्ज की, गुरमत ने कुछ वखरियां गल्लां कीतियां ने संसार दी खेल तो। किसी पढ़े लिखे डॉक्टर नूं पुछो कि बच्चा जन्म लैंदा सर क्यों रोंदा है, ते असीं कहिंदे आ इस करके जन्म का दुख है। ते वैसे मैंने गुरमुखा किसी कहा नहीं सी भी अज कोई दिन भी है शायद गोरियां का मदर डे। मैं कहना चलो चंगी गल है, सानू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच समझ पै जाए मां की चीज होंदी है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच है देखो वो बच्चे का जन्म होया है, इनू ये ना समझियो मैं छिवियां दीआं गल्लां करन लग पिया। मां बिलकदी है जन्म दिंदिया, उस तो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होंदी, मरण तक जाती है। पर जदों उस बच्चे का जन्म हुंदा है ते डॉक्टर उस बच्चे नूं उसे वेले लपेट के मां दे सीने लांदे ने, पता नहीं की ममता उहदे अंदर पई है, बिलकदी कुरलांदी बच्चे नूं जन्म दिंदिआं बच्चा सीने नाल लगन दी देर है ते इकदम हसण लग पैंदी, उहदीआं अक्खां विच खुशी दे अश्रू अथरू आ जांदे। जदों बच्चा रोंदा है असीं आम तौर ते कहिंदे हां कि बच्चा इस करके रोंदा है कि इहनूं जन्म का दुख है, पर गुरमत कहिंदी बच्चा इस करके नहीं रोंदा जन्म का दुख है, इस करके रोंदा है कि भावें माता दे उदर दी अग सी पर तेरी याद ने मैनूं तत्ती वाह ना लगन दित्ती। अज जिहड़ी वकारां दी खनेरी चल रही है अज दा विछड़िया पता नहीं किन्ने कु जन्म लग जाए। रोंदा इस करके लिव टुट गई। गुरु अमरदास जी ने कहा लिव छुड़की लकी तृष्णा माया अमर वरताया। भाई गुरदास किंग ने रोवै रतन गवाए का माया मोह गुबारा, ओ रोवै दुख अपना हासस गावै सब प्रवाह। मैं दो मिनट जां चार मिनट विचो निकल के अज दे दिन संबंधी जरूर अर्ज कर देना। पिछले दिन ही मैं एक बेनती की सी, प्यारियो मेरे नौजवान वीर भी बैठे होणगे भैणां बैठियां ने, जिंदगी विच असीं कहिंदे आ मनुखा जन्म एक बार मिलिया है, परत परत के नहीं मिलना। दुनिया का हर रिश्ता बनाया जाता है, स्त्री की मौत होंदी है। बाबा जी ने कहा भंड मुवा भंड पा दी है, मौत तो बाद दूसरा कार्ज रचान तुरदा है। पुत्र जवाब दे जाते हैं तो कई बार दूजे लोगों तो वो प्यार पैदा करने का यत्न करता है, आम लवारसा पुत्र बनाना शुरू कर देता है। दुनिया के रिश्ते स्त्री तो बाद स्त्री मिल सकती है, पुत्र के बाद कोई होर पुत्र बन सकता है। मित्र एक छड़े दस मित्र मिलेंगे, पर यह गल कभी ना भुलियो मनुखा जन्म भी एक बार मिलिया है ते मापिया का प्यार भी केवल एक बार मिलता। मां का प्यार कितों नहीं मिलता, बाप का प्यार कितों नहीं मिलता। यह रिश्ता ना खरीदया जाता ना बनाया जाता है ना इनू कोई खो सकता है, मां प्यार केवल एक बार है। ते एक मैं बेनती होर की सी कि असी एक गल नूं समझिए, इहनूं मोह दीआं तंदां ना समझियो। एक सज्जन ने बड़े सोहणे शब्द कहे सन, मैं फिर अज दोहरा दिया, हर बंदे की जबान ते शब्द मां क्यों है। एक बंदा 100 साल की उम्र भोगदा पिया ते उहनूं जदों कितें तकलीफ आउंदी है ते कहिंदा हाए मां। एक नौजवान जिहड़ा है उहनूं पीड़ा आउंदी है कहिंदा हाए मां। क्यों दी जबान ते मां मां कूकदा, मरते दम तक आवाजा मारी जांदा मां। हालांकि मां नूं गया होया कई साल हो चुके हैं। प्यारियो वो मां तां कहिंदा है क्योंकि वो निक्के जे सैल ने मां दे सांह विचों सांह लए सन, उसने मां दी खुराक विचों खुराक लई सी, उसने मां दे जीवन विचों जीवन लिया। जिसने 10-9 महीने मां दे सांह विचों सांह लिया, मां की खुराक विचों खुराक लई, मां के खून विचों खून लिया, चेते रखियो 9 महीने मां ने इन्ना कु प्यार कर दिता कि मरते दम तक भी बंदे दे अंदरों आवाज हाए मां निकल रही है। मां प्यार ही कैसा है। जड़ी बेनती मैं करनी चाहना, अज असीं देखने हिंदुस्तान विच भी

गुरु अर्जुन विगनन के नाशक, विगनन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री

माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

लगे फील्ड विच इहदा गुरु बजुर्ग सामने आया। उन्हें कमारन भट्ट नूं कहा, मैनूं नाज है तेरे ते, मैनूं पता मेरी कीती होई कमाई मैं अज तेरी झोली विच पाई है। मैं भावें चार दिनां दा परौणा वां पर मेरी गल तू दुनिया दे कोने विच पहुंचाएगा। भरी सभा विच कहिंदा है, मैं तुरंत तो पहला तेन पुछना चाहना तेरे अंदर कोई सवाल तो नहीं। कमारन पुट पट उठ के खड़ा हो गया। 15 साल हो गया पढ़दियां नूं, उठ के ना अपने गुरु दे पैरां नूं ला के हथ नमस्कार करके कहिंदा है, पहला तो मैनूं खिमा कर दिओ भी मैं बड़ी वड्डी गुस्ताखी कर लगा। कहिंदा है कमारन पट, वो कहिंदा दस बेटा कोई तेरा सवाल होवे। कहिंदा मैं 15 साल तुहाडे कोल तालीम लईए, मैं इन्ना कुछ सीखने तो बाद तुहाडे नाल चरण चर्चा करनी चाहना वा कि वेद धर्म तो उत्ता बोध धर्म नहीं है। मैं तुहाडे नाल ही चर्चा करनी है कि बोध धर्म जिहड़ा है ये वेदिक धर्म का मुकाबला नहीं कर सकता। कहिंदे ने हैरान हो गया, बंदे के पैरों थले जमीन निकल गई, इन्नी मेहनत कराई। मैं कहना उस बंदियां दी कदी लगन तक्यो, मैं कई बार सोचना वा कि इन्ना कुछ साडे अंदर गुण ग्रहण करन दी समर्था, इन्नी कुछ साडे अंदर गल सुन दी समर्था। ते उस बंदे ने कुमारन भट्ट ते शंकराचार्य ने ते 32 साल की उम्र विच मठ बना के बुद्ध धर्म दीआं जड़ां इहो जिहीआं पट्टीआं अज उत्थे केवल दर्शन करन आउंदे ने, बाकी सारे बाहर ही प्रफुल्लित ने। मेरे कहण तो मुराद इहे कि दाता मेहर करे। देखो यह जिहड़ा सिद्धांत है, जिन्नी देर तक सिद्धांत है उन्नी देर तक पंथ नहीं जाता। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहना करनी समाप्ति अगले बुधवार इहनूं मैं तकरीबन विस्तार नाल चलांगा। देखो किन्ने रुख नूं किसे ने कुहाड़े नाल कटिया सी, ते जदों कुहाड़ा मारिया ते रुख विचों पानी सिमिया। कभी देखिए जदों भी लोहे का वार करिए पानी सिमिया, ते उस वेले किसे कवि ने विद्वान ने रुख नाल गल्लां करके पुछिया, तू झखड़ भी जर जाना, तू हड़ भी जर जाना, तू लू भी जरना, कक्कर भी जरना, पर जदों तेरे ते कुहाड़ा पैंदा तू इको दम पानी भर के अखां भर के रो क्यों पैंदा है कि कुहाड़े तो तेनू डर लगता है। उन्हें कहा छेचे रखी, जिदन का मैं बनिया वा ना मैं झखड़ा का मुकाबला करदा आया, कभी मैनू डिगे नू तू रोंदिया नहीं तकिया होना। जदों हड़ आउंदा मैं टुट जाता पर रोंदा नहीं, पर जदों कुहाड़ा मैनू पैंदा मैं उदों रोना वा। कहिंदा क्यों कुहाड़े तो डर के? कहिंदा अकला कुहाड़ा आवे दी परवाह कोई नहीं, पर मेरी पैदा कीती लक्कड़ जदों कुहाड़े विच दस्ता बन के मैनू वढ़न लगदी है उदों मैनू दिख लगदा मेरे घर दे मैनू वढ़न आ गए। बस सच जाणियो बाहरों कोई खतरा नहीं। गुरु मेहर करे। देखो हुण चंदू ने शब्द वरते नहीं, वह कहिंदा भी मैं इन्हां नूं खत्म कर देंगा। इन्हें आके शब्द वरते कि गुरु हरगोबिंद साहब दो कृपाना पाई बैठे ने, उन्हें तख्त बनाया हुआ है, अपने आप नूं पातशाह कहांदे ने। ये आपां अगले बुधवार बाचांगे बाणी विच पातशाह क्यों कहा है, शस्त्र क्यों पाए ने, क्योंकि इस सिद्धांत नूं इस नाल जोड़ना अत जरूरी है। इन्हीं को बेनतियां च प्रवान करिया जे खोईआं बेअंत भुल्लां, कृपालू साध संगत जी आप कृपा करके बख्श देणियां। कल जिवें गुरमुखा समा अनाउंस कीता है 7:30 to 8:30 उसे अरदास दे सब्जेक्ट नूं यतन करना इत्थे संपूर्णता हो जाए, ना होई तो जिथे अगे कथा करांगे उत्थे अरदास वाला सब्जेक्ट ही रखना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।